गानो बनानो है तो जल्दी जल्दी बीट भेज दे तो का गानो बन जाएगा सब बताए मोड़ी मोड़न है मोड़ी लोग का कोई साइबर आ रहा है नहीं बनाओगे बनानो तो पड़ोगो ऐसे कैसे चलेगो यही दस जाओगे जमीन में।

गानो बनानो है तो जल्दी जल्दी बीट भेजते तो का गानो बन जाएगा सब बताई मोड़ी मोड़न है मोड़ी लोग का वो साइबर आ रहा है नहीं बनाओगो बनानो तो पड़ोगो ऐसे कैसे चलेगो यही दस जाओगो जमीन में।